अलख नरंजन एको वरतै, एकै जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी। लाकीरी तो बर्मा तक अकाल पुरख वाहेगुरु दे दर तो ही सारे मंग रहे हैं, ते उस अकाल पुरख वाहेगुरु अगे की रखी, ए तन दौलत पदार्थ तो ओदी देन है और जुगा जुगंतर सानू देंदा आ रहा है, पर असी की रख सकते हैं ओदे अगे। ता तन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे, भाई अमृत वेले उठ के इशनान करे, ते एकाग्र चित होके मोह के बोलन बोली है जित सुन दरे प्यार। इस मुख दे नाल अकाल पुरख वाहेगुरु दी उस्तत कर, ए उस्तत उसकी बेटा करेगा ए कबूल कर दे। किसी तन दौलत ते वटे प्रसन्नता नहीं मिलनी, तन गुरु नानक पातशाह

रानी राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा हुए। इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड्डी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जाना। इसे तरह कितना समा सतसंग करती रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जी कोई संगत विच बैठदा है हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे। जे अंब दे ब्रिश ते बैठा है तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे साकत पुरशां विच जा पवे तां पापां दा भागी बन जांदा है। जे सत संगत विच जांदा है तां इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद दी घरवाली रोज सत संगत विच जाके गुरबाणी का कीर्तन सुनना, आनंद मानना, क्योंकि ये भी आत्मा की खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नू खुराक की लोड़ है, साडी आत्मा नू भी परमेश्वर के नाम की लोड़ है। वो नाम का भोजन छकती है जो साडे अंदर जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनू ही भोजन की भुख लगती है। पर वो भोजन नाम का छकती है। उच्चारण करो श्री। तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तां की तकिया कि राणी नहीं सुती। मन विच शक पैदा हो गया कि किधर जांदी है अद्धी राती उठ के। मन विच सोचिया जितने तक कोई अखी ना वेख लईए उस तरह एवं किसी नूं कलंक लाउणा या कह देना चंगा नहीं है। चंगी तरह छान बीन कर लैनी चाहिए है भी किधर जांदी है। ता राजा अज सुता नहीं पर उवें ही कराड़े मारन लग गया। ते राणी ने समझिया भाई हुण आराम विच हो गया है। ते राणी सतसंगत वल तुर पई। मगरे मगरे राजा जा रहा है। राणी जदों सतसंग विच जा पहुंची ते मन नूं त्रयास आया भाई चलो किते माड़े पासे तो नहीं ना जांदी, किते माड़े पासे तो नहीं ना गई। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर की भगती विच ही जुड़ी हुई है। पर राजे ने राणी दी एक खड़ाऊ चुक के घर ले आंदी। भाई पुछांगे भाई तेरी दूजी खड़ां किथे है। राजे ने आके संदूक विच उस खड़ां नूं बंद कर दिता। राणी जदों कीर्तन सुनदिया कीर्तन दी समाप्ति होई ते बाहर निकली तां एक खड़ां दा जोड़ा पिया। बड़ी डरी कि मैं राजे नूं की जवाब देवांगी। जदों पुछेगा भाई दूजी खड़ां किथे है तो मैं जवाब की देंगी। मुड़ के जाके साध संगत विच जाके बेनती कीती कि साध संगत अरदास करो मेरी दूजी खड़ाऊ मैनू मिल जावे, मेरी पत रह आवे, मेरी इज्जत रह आवे। जे राजे कोल ए पोल जार हो गया तो राजा मेरे ते शक करेगा। उच्चारण करो श्री। सारी संगत ने जदों अरदास कीती ता अकाल पुरख वाहिगुरु ने ओह जी पुरानी खड़ाव परमेश्वर ने भेज दिती। कोई पछाण नहीं सकदा कि ए पुरानी है या नवी है। राणी आके उसी तरह रोज दी तरह सौ गई। सवेरे जदों राजा उठिया ता कहन लगा आ जरा अपनियां खड़ावां तो दे, मेरियां हैं नहीं इत्थे नेड़े ते मैं इशनान कर दवां। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु।
ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਖੜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਟੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਏ? ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ। ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ

परम सत्कार योग गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी साध संगत अज सचखंड निवासी संत बाबा ईशर सिंह नानकसर वाले महापुरश आप जी उन्हां दी बरसी मना रहे हो। साधुआं दी याद विच सदा मेले लग्या करदे हन। ए बख्शियां रूहां हुंदियां हन। थोड़ा समा तुहाडे दर्शन करने ने ध्यान दे के सुनियो। जेड़े सुन लैणगे ओह भी साध संगत पछताउणगे, जेड़े ना सुणगे ओह भी पछताउणगे। विचार ही करनी है दुनिया दे विच महापुरशां दा आउणा। साध संगत जिवें लोहा लोहे तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं हुंदा। बंतर दा फर्क हुंदा, लोहा भी लोहा हुंदा, लोहे तों बणियां चीजां भी लोहा हुंदियां ने। जिवें लक्कड़ तों बणियां चीजां ते लक्कड़ विच कोई फर्क नहीं होया करदा, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें पाणी ते पाणी तों बणियां लहरां विच फर्क नहीं हुंदा। प्रेमियो समुंदर लहर मारदा, छल मारदा समुंदर दी छल, फिर समुंदर दे विच ही खत्म हो जांदी है। जिवें समुंदर ते समुंदर दियां लहरां विच कोई फर्क नहीं, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें सोना ते सोने तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं होया करदा, बंतर दा फर्क हुंदा, वेखण दा फर्क हुंदा। इवें बाबा ईशर सिंह ते अकाल पुरख च कोई फर्क नहीं सी, वेखण दा ही फर्क सी। प्रेमियों अज जिन्हां संतां दी बरसी मना रहे हो, याद मना रहे, बरसी तां असीं शरीर करके मनाउने आ भई संत चले गए। अग्ञानी पुरशां नूं आउंदा भी संत चले गए, ज्ञान नूं इन्ने साल हो गए। अज दास अखबार च पढ़ रहा सी 25 साल हो गए, शायद 25वीं बरसी है। कौन कहिंदा महापुरश चले गए? महापुरश तां हाजर नाजर बैठे ने। बुलिया रब तैथों वख नहीं पर वेखण वाली अख नहीं। हुण अन्ने नूं किहड़ा आखे भी, जे अन्ने नूं कहीए भी दुनिया बड़ी सोहणी है, अन्ना जे ना मन्ने, अन्ना कहे दुनिया तां सोहणी है ही नहीं, उत्थे की दलील देईए। दुनिया ते फुल ते बड़े ने पर गुलाब दे नाल दी सुगंधी नहीं मिलदी। संसार ते महापुरश ते बड़े ने पर बाबा आनंद सिंह वर्गे बाबा, इस तों अगे चलो बाबा महाहरनाम सिंह पुच्चो मंडी वाले महापुरश, उन्हां वर्गे बाबा ईशर सिंह जी नानकसर वाले महापुरश, इन्हां वर्गे महापुरशां दा मिलना साध संगत जी बड़ी मुश्किल है। दुनिया ते लकड़ां ते बथेरियां ने पर बामण चंदन दी लकड़ी दा मिलना मुश्किल है। संसार ते पाणी ते बड़े ने पर गंगा जल दी महानता अपनी वखरी है। सारे पर ना कोई होया ते ना किसे होना, मेरे प्रीतम वर्गा कोई रसना रह ना जाए। तेरे जिया नहीं जग

0: टेक है क्या गुण तेरे शार्ष माली, शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है, कोट अपराधी तरियारे गुरु नानक सुनया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर जियो नाम परियो रामदास, नाम परियो रामदास, हो दीन दयाल कृपा।

कहायो पाठ अपने इस शब्द दे विच धन गुरु नानक साहब का जिक्र करदे आ लिखदे ने ओ जोत रूप हरि परमेश्वर जिसनू कोई किसे नाम नाल याद करता है कोई किसे नाम दे नाल ओ हरि जोत रूप परमेश्वर इस दुनिया दे विच गुरु नानक दा नाम लैके प्रगट होए उस हरि उस जोत रूप परमेश्वर ने अपने आप नू गुरु नानक इस दुनिया विच आके अखवाया। भाई गुरदास जी भी बयान करते ने आप नारायण कलातार जग में भर भरियो। शब्द की शुरुआत पट्टा ने इस तरह की थी। सब तो पहला गुरु नानक

कोई सौखी चीज मिल जाए, कोई घालना ना घालनी पवे, इस तरह नहीं। ये तुरती चीज इलाही दात जिन्हों लिखी उसे नु मिलनी, पर मिली भी कालना करके। गुरु अमरदास हर साल गंगा नहान जाया करते सन हरिद्वार। कई साल जाते रहे और एक दिन

अमृत छतर गुरु रामे दियो समा बीतिया गुरु नानक तो गुरु अंगद बनी गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास को ए गुरुगति

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुस प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माय लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। He has gifted me with the balm of Lord's name, and I have enshrined love for Him within myself. The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

भाई शाह भाई गुरदास जी, अकाल पुरख वाहेगुरु अगे अरदास कर रहे हैं। हे वाहेगुरु, हाँ अपराधी गुनाहगार। कोई भाई गुरदास जी अपराधी नहीं सन, पापी नहीं सन, क्योंकि जिसने सच दे मार्ग ते चलना है उसनू निम्रता धारण करनी पड़ेगी। जे किसे जपां तपां दा मन विच हंकार आ जावे तां ओ जप तप कीते होए निष्फल हो जांदे हन। इसलिए जिसने इस मार्ग ते कदम रखिया उसने सब तों पहला निम्रता धारण कीती है। भाई साहब श्वास श्वास बंदगी करदे सन, श्वास श्वास जपदे सन, ते फिर सारा जीवन उन्होंने गुरु चरणा विच रह के अनेकां जीवां नूं गुरु नानक दे दर नाल जोड़िया। एडी मान महान हस्ती होंदिया होया भी भाई साहब कहिंदे नें हों अपराधी। आ जो तुसी शब्द सरवण कर रहे हो, गल्ली असी चंगियां, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दा ए शब्द है। गुरु नानक सच्चे पातशाह भी अकाल पुरख वाहेगुरु अगे ए अरदास कर रहे हैं। हे वाहेगुरु, गल्ली असी चंगियां, असी गल्लां करके तां बड़े चंगे बनन दा जतन करदे हां, पर ऐसे हां नहीं। हे वाहेगुरु, असी अपने आप नूं बहुत कुछ समझदे हां, पर ओ गल साडे विच है नहीं। गल्ली असी चंगियां, गल्लां असी बड़ियां ज्ञान दियां करदे हां, पर आचारी बुरियां। असल विच असी माड़े पासे जा रहे हां। मनो कसुद्धां कालियां, मन माड़े पासे दौड़दा है, ते गल्लां असी चिते हुण दियां करदे हां। हे वाहेगुरु, तेरी बख्शिशी सानू तार सकदी है, तेरी रहमती तार सकदी है। और भाई साहब गुरदास जी कहंदे ने, मैं तां रोम रोम गुनाहगार हां। हे वाहेगुरु, हों अपराधी गुनाहगार, हों बेमुख मंदा। चोर यार जुआर हूं पर घर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ की महान हस्ती हुए हैं। आप जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह ने कलयुगी जीवां नूं तारन हित गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रचना की, उस दे लिखारी हैं भाई साहब भाई गुरदास जी। सिख पंथ के वेद व्यास होंदे हुए भी आप कहंदे हन हों अपराधी। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। एक वेरा दा जिक्र है, भाई साहब गुरदास जी जा रहे हैं, ते पिछे बहुत संगत जा रही है। किसे ने वेखिया भाई ये किड्डी महान हस्ती होवेगी जिदे मगर इतनिया संगतां जा रही हैं, तां पुछन लगा भाई ये कौन साहब हैं। भाई साहब गुरदास जी ने एक गल सुन ली, ते आप उस प्रेमी दे पास आ गए जिसने पुछया सी भाई ये कौन साहब हैं। भाई साहब कहन लगे, भाई जे कुछ मेरे बारे पूछ रहा है ता इना नू ना पुछ, मैनू पुछ, क्योंकि इना ने मैनू बाहर मुखी वेख्या है, ते मैं अपने अंदरले नू भी जानदा हां जो कुछ मैं हां। असी भी अपना परिचय कराउंदे हां ना, कोई पुछे भाई तुहाडी क्या तारीफ है, ते किड्डे चंगे चंगे शब्द लभ के अपने लई वरतदे हां। और भाई साहब नू जदों पुछया गया ता भाई साहब कहंदे ने, भाई इना कोलो ना पुछ, जे मेरे बारे कुछ पुछना है ता मैनू पुछ, क्योंकि इना ने मैनू बाहर मुखी वेख्या, मैं अपने अंदरले नू भी जानदा हां। आख्या जी तुसी दस दियो। ता भाई साहब कहन लगे, हों अपराधी गुनाहगार, हों बेमुख मंदा।
चोर यार जुआर हो पर घर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विशास काती अकिरत घन में कोई ना रखंदा, सिमर मुरीदा टाडिया सतगुर बख्शंदा। आख्या मेरे वर्गे अपराधी और गुनाहगार नू कोई थां सी, पर गुरु नानक दे दर ते मैनू थां मिल गई। ते जिसने पुछया सी ना भाई ये कौन साहब हन, ओ एडी निम्रता वेख के भाई साहब दे चरणा ते विछ गया। भाई साहब दे चरणा ते विछ गया, आख्या जिदे सिख इतने महान हन ओदा गुरु कितना महान होवेगा। इसलिए गुरु नानक सचे पातशाह आप निरंकार दा रूप होंदे होए भी आप कह रहे हैं गली असी चंगियां।

कोई हो जाए नहीं। जिन्हें प्रभु दा नाम लिया होवे तिना तरिया होवे। जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन सतगुरु किड़ियां बख्शियां कर रहे हैं, नाम दी वड्याई कर रहे।

पुत्र ने जन्म लिया है ते पुत्र जन्म तो ही पिंगला है, हाथां ते पैरां तो हीण है। समा बीतिया मां गुजर गई, होर समा बीतिया ते इसदा पिता भी गुजर गया। सारे लोग आखन लगे बे ए बच्चा बड़ा ही कर्महीन है, हर कोई नफरत करन लगा। भैण भरा रिश्तेदार सारे ही बोल कबोल बोल दे, जदों दा तू जन्म लिया है ते घर विच काटा ही काटा है, तुर नहीं सकदा, हथां ना कुछ कर नहीं सकदा, कोई तेनू किन्ना चिर खवावेगा। रोज बोल कबोल बोल दे ने तू बड़ा ही कर्महीन है। अज इस बच्चे कोलों सुनिया ना गया, हर रोज दियां गल्लां सुन के अज तंग आया, आखन लगा मैं तुहाडा दिता नहीं खांदा। ओ प्रभु परमात्मा जिहड़ा सारी सृष्टि नूं चलाउंदा है, मैं बाहर

दिन बीतया रात बीती फिर दिन आया उस मालक दी बख्शिश होई आज इस जंगल दे विचों ब्रह्मा दे पुत्र श्री नारद जी लंघ रहे ने अचानक बच्चे वल निगाह पई आखण लगे ओए बच्चिया इना उदास ते नाराज क्यों बैठा है प्रभु दा नाम जपया कर प्रभु दा नाम जपण दे नाल सारे दुख ते भुखा दूर हो जांदे ने राम राम जपया कर राम नाम जपण दे नाल संसारी दुख ते भुखा सारिया ही मुक जांदियां ने अनार जी इनी गल करके तुर गए ने बच्चे ने कन्ना नाल सुनिया ते हिरदे विच बसा लिया सिमरन विच जुड़ गया ते की सोजी मिलती है किन्ने ही महीने उस प्रभु दे सिमरन विच बैठा रहा राम राम दी जाग सवासा नाल जुड़ गई किन्ने महीने बैठा रहा आज किन्ने महीनिया बाद इस दिया अखां खुलियां ते देखो नाम दिया बरकतां की तक रहा है इस दे हाथ ते पैर ठीक हो गए हुण ए पिंगला नहीं दे रहा अजदों इसने कुछ तकिया ना ए प्रभु तू किड्डा दयालु है तू किड्डा कृपालु है सुनिया सी तू रहमतां दा मुजस्मा है अज ते तेरियां बख्शिशां अज ते तेरे

ते गनका ने दरवाजा खोलिया, बाबा जी अंदर लांग आओ, अंदर लांग आओ। महापुरुष दरवाजे विच खलोते ने, नस के अंदर गए। सतपुरख आए ने सेवा कर लवा, नस के गई ते दूध का गिलास लेके आई, बाबा जी छक लवो। महापुरुष आखन लगे, बच्ची तेरा काम की है, की किरत कर दी है? बाबा जी मेरा धंधा बहुत माड़ा है, मैं कर्मां दी मारी बेसवा। आखन लगे, बच्ची आ तेरे हथां दा दुध असां ने नहीं पी, इन्नी गल आखी ते गनका दे अखां विचों हंजू आए। क्यों नहीं पीना, तेरा कर्म माड़ा है, जे साड़ी एक गल मनेगी ते तां ए दुध दा गिलास मैं पीवांगा। महापुरुष दुनिया नू तारन वास्ते आंदे, बाबा जी तुहाडी हर एक गल मनांगी। महापुरशां दे कोल एक पिंजरे दे विच

तू राम बोलेगी इवी बोलेगा, इनू राम राम सिखाया कर, गल मनेगी। हाथ जोड़ के आखन लगी, बाबा जी इस तोते नू मैं राम राम सिखावा। महापुरशां ने दुध सकिया, हुण महापुरशां दे बचन तोते नू हर रोज राम राम सिखाउंदी है, हर रोज किन्ना चिर राम राम करदी है। ते एक दिन इहो जिहां बख्शां होईयां, राम नाम इहो जिहा इहदे सवासां नाल जुड़िया, तोते दा उधार ते होना ही सी, इहदी रसना ते राम सदा वास्ते वस गया। हर वेले राम राम राम ते इतिहास विचों सोझी मिलदी है, एडी वड्डी पापण ते राम नाम दियां बख्शां गई स्वर्गां। राम नाम ने तार दिता, लोक परलोक सवार दिते, स्वर्गां दे दरवाजे इस लई सदा वास्ते खुल गए। लई ए है प्रभु दे नाम दी महिमा। सतगुरु बाणी विच सोझी दे रहे ने, जप हीन तप हीन कुल हीन कर्म हीन, नामे के स्वामी ते उतरे। किड्डा भी गुनाहगार है तू, किड्डा भी पापी है, किड्डा भी कर्महीन है, प्रभु दा नाम जपेगा, राम नाम जपेगा, वाहेगुरु अल्लाह।

शब्द गुर पीरा शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा

कोई अपने आप जोगा, कोई दुनिया जोगा, कोई देश कौम जोगा, तू कि जोगा। जेड़े प्यार नाल गुरु साहब ने पूछया बच्चे दे कर्म देखो, उस प्यार नाल तोतली जी जवान नाल कहना।

चौकीदार खड़ा देखिया, थोड़ी जी संगा आई ते जोगा सिंह आगे चला गया। चक्कर कट के आना, पहरेदार हट जाएगा, फिर वेसवा दे शिवारी चढ़ागा, पर साध संगत कौन है चौकीदार? कलगियां वाला साधु जेड़ा आया ही रखिया करने वास्ते है।

क्या हाल सुना तेरा सफर कैसा रे पर कहते नहीं दसो ते सही ओ कौन सी जिन्हें सारी रात तेन जगाई रखे ते गुरु सर फिर कहते जोगा से हैं तू की लैना रात बीत गई वो गल भी खत्म हो गई तू अपना हाल सुना पर नहीं फिर पूछता महाराज दसो तो सही वो केड़ा मूर्ख से जिन्हें सारी रात आप जगाई रखे ते हुण दशमेश पिता कहन लगे ओ जोगा सिया मैं ते चाहता सां के पड़दा पिया रो पर जे तू नहीं हटदा ते फिर सुन ओ जोगा सिया ओ मूर्ख होर कोई नहीं ओ तू ही सी जोगा सिया जा तू वेसवा दे चुबारे चलिया सी ते मैं पहरेदार बन के उत्ते खड़ा हो गया सी तू बचपन में एक गल कही सी महाराज मैं तेरे जोगा ते असी भी कहा सी जोगा सिया जे तू मेरे जोगा है ते मैं तेरे जोगा ए भी कहा सी जे तू मेरे जोगा नाम ही होवेगा मैं ता भी तेरे जोगा होवांगा जोगा सिया जा तू वेसवा दे चुबारे चलिया सी ते मैं पहरेदार बन के सारी रात उत्थे खड़ा रहा ओ जोगा।

कि सारी रात मैं पहरेदार बन के खड़ा रहे हैं। दुख है ते केवल इस गल का तू मेनू बेसवा दे चबारे थले खड़ा करवाया। ओ जोगा सिया होवे मेरा सिख होवे गुरु नानक दा सिख ते जावे ओ बेसवा दे द्वारे। ओ जोगा सिया ऐसे सिखा दी ते मैं कदी भी कामना नहीं जद सुने ते जोगा सिंह भुब्बा मार के रोवे गुरु दे चरण पकड़ ले कहन लगा महाराज मैं समझिया सी कि मैनू किसी ने नहीं देखा ये भी समझदा सा कि तैनू भी पता नहीं लगा पर बादशाह की पता सी तू ही ते बांह पकड़ के बजाण वाला सी। असी हमेशा यही समझते हैं सानू जे दुनिया नहीं देख रही तो गुरु भी नहीं देखता पर बादशाह दुनिया की नजर तू बच सकते हैं पर तेरे तू नहीं पर गुरु का बिरद है। जोगा सिंह फिर

अगर गुरु ने सानू कुछ दिता है उसनु संभालिए गवाइए ना आपसे ईर्खा दुखदा आपसे नफरत छड़ के छोटिया मोटिया गल्ला छड़ के मना विच प्यार रखिए और सच जानना जिना हिरदा विच प्यार नहीं जिना दे मना विच प्यार नहीं उना दे घरां विच प्यार नहीं जिना घरां विच प्यार नहीं वो घर नहीं वो फिर शमशान होते हैं क्यों घर चंगे समान नाल चंगे फर्नीचर नाल चंगे सख मरमर लगाण नाल घर नहीं बनता घर बनता प्यार नाल इतफाक नाल घर वो है जिथे मापियां दा आदर मान है घर वो है जिथे एक दूसरे दी गल मन्नी जांदी है घर वो है जिथे नाम बाणी दा प्रवाह चलदा है घर वो है जिथे एक दूसरे नूं जी कह के बुलाया जांदा है घर वो है

परिवर्तित देगा। सतगुरु तुम्हारे कार सवारे सर्व परे प्रभ अंतर जाने। उस वेवर कम्स टू द रिफ्यूज ऑफ गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सर्व परे प्रभ अंतर जाने। गुरु हु इज द इनर नोड अंतरजामी, ही नोज एवरीथिंग, ही इज द इनर नोड, ही नोज अवर हिमसेल्फ एंड हूसोएवर फॉल इन द रिफ्यूज ऑफ गुरु, हूसोएवर कम्स टू द रिफ्यूज ऑफ गुरु, ऑल द विशेस दे आर फुलफिल्ड। And Sikh has no other place. Good Sikh has no other mainstay, no other sport than the Guru. If you want your test to be performed, Kita Lodiye Kam Suhar Pai Akhiye Karj De Sawar. If you want thy work to be performed, let's pray to the Guru. As we are gathered here for this very, very auspicious occasion. Nanak Satguru Tina Milaya Tina Ture Paya Sanjo. It's predestined that the two people are wedding. They are being wedded in the presence of, holy presence of Guru Granth Sahib. Let's invoke the blessings of Guru by doing his kirtan, by saying कि सतगुरु तू साडे काम कर सकना है, बाकी दुनिया विच कोई नहीं, किसी कोई कोए मंज निमाणी इक तू, साडे लई ते तू ही सब कुछ है। सो सत्संग जीओ संगत दे रूप विच, गुरु दी कृपा दा सदका, इस तो वड्डी असीस कोई नहीं। जदों सारी संगत रल के कवे सतगुरु तुमरे, बड़े प्यार नाल आखो।

भाई शाह भाई गुरदास जी, इस वार दे विच गुरमत दे छे नियम दस रहे हैं कि गुरमत की है, गुरसिख कौन।

निम्रता धारण करने। गरीबी तो पाव किसे कंगाली या भुखमरी दा नहीं लेना। गुरु नानक दे दर ते निम्रता नू गरीबी आख्या गया। सेवा सिमरन परपकार करदिया होया भी मन विच हंकार ना आवे, मन विच किसे गल दा गर्व ना आवे, ए है निम्रता। भाई साहब कहिंदे हन पहला नियम गुरमत दा है निम्रता धारण करनी। दूसरा नियम अपने जीवन नू पवित्र रखना। एका नारी जती है पर नारी ती भैन वखाणे, वेख पराइयां चंगियां मावां भैणां तियां जाने। ऐसा गुरसिख दा पवित्र जीवन है जो